रख खतमड़ी हुआ बावड़ी पूछ, अबे ढोल पीट ले, रख गिटार बजा ले जैक्सन की औलाद, रख पीपड़ी ले फूक ले हवानी भर दी के अंदर, रे ऑर्केस्ट्रा बजा।